कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पाव है मेरे हर भगवंता।

नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवार शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो मद कियो।

जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तहारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद वर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असम ताका मूड उचारत भेदा जाको भेद न पापत बेदा

अयो राव कही पुपा वंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुर खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव या जुगात स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस्तु तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे

रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाश्व सकै न कोई। एक बार जिनत मैं संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम ते हारू कहा, दारिद्र दुष्ट दुख ते रहा।

जत पहरतीर सुनियार अहरण मत वेद हथियार पौ खलावन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल कड़िय शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर कर्म तिन कारु नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक

प्रभंगी प्रमाथे समस्ति बेपुते कलंकं बिना निकलंकी स्वरूपे नमो राजराजे स्वं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वं परम सिद्धे नमो राजराजे स्वं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखिय भरमिय भोगिय भोगते नमो जोग जोगे स्वं परम जोगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे

रे नाम्या कामे पुजं पर्यात छंद। चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चचरी छंद। न सत्रै न मित्रै न परम न पितरै न कर्मं न काय जन न जाये न चित्रै न मित्रै प्रेह पवित्रै प्रति से आदि से दृश्य कृष्ण भगवती संतोय प्रसाद कहते कि आशिज देशे के आ भिज भिसे के आ गंज कर्म के आ पंच परम के आ भिज लोक के आदित शोक के अवधूत भरने के विभूत करने के राजन प्रभा के धर्म तो जाके आ शोक भरने के सर्वा भरने कि जगतं कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मं स्वरूप है कि अनुपव अनूप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन के कैदि के रोजी रजा के रही मेरे हक है कि पाक बेव है कि गैब लुगैव है कि अभुल गुना है कि साह अनसाह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है

सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपास्य है, सर्वनाश्य है, सकरुणाकर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से खल खंड से परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, धरणी कृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अजवा कृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खलकायक है।

कह भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ फिरे हो लिए सास मुंद्रन नाथ फिरे हो।

संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी एक एक की पीर पिछानाए, कट कट के पट पट की जानाए। जब अकर्ख करा करतारा प्रजा तरतब दे अपारा, जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तहारा, आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बे ते दे अरे आलम।

कछ भेद न जान। मान देव को कहत सदा शिव निरंकार का चिंत है पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा के बिन सजा प्रथम संसारा। एक कै रूप अनूप सुरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा अंडर जेर जसे तजकीनी। उत्पुज खान बहुर रचनीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा। कहूँ सिम पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंप व्या जुगास रूप सुयंप। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करूरण काता। जे अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जमन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निक नहीं है। रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि ने हरि हो ताकि ताप तनक मैं हरि हो। रे सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट शाश्व सके न कोई। एक बार

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को शय करता। श्री अस्तु जब पह दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछित फल पावे, सोई दुख न तसाय, व्याप्त कोई अड़ेला। सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुने मूर चित लाए, चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ। निकट न तिन नर के रहे, हो जो याकी एक बार, चौपई को कहे चौपई। संबल 17

पाए गहे जपते तुमरे तपते को आखरे नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान ने कहे मत एक ना मान्यो।

जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, माया अग्न सभी को जे ही करते खेल रचाया, जा तुस पहना था जमिया परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा। माया अमरवरता है माया, जित हर विसरै मोह उपजे भाव दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसाद दीना लिव लागी, तिनी विचे माया पाया। हर आप मुल्क है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए, किसै विटो रहे लोक मिल लाए, ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनु सिर सौंपीए बिचों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मनवाए, हर आप मुल्क है भगत ना के नानका, जिनु हर पल्लै पाए, हर रास मेरी मन बन जा रहा, हर रास मेरी मन बन जा रहा, सतगुर तेरा सजानी, हर हर नित जपे ओ जी, ओ लाह खटे हो दिहाड़ी, हो तन तिना मिलिया जन हर आपे पाणा।

जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पत दा राखा पवाहे गुरु। हे अकाल पुरख अंतर जामी, अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब, होर गुरद्वारिया गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे नमाणियां दे मान,

कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनना कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहां

0: तो प्रीत त्याग सर्पन रंध गिर गिर सजाना कर पर दान दयाल बखसंद नानक है मन ये अनराओ जो कर पाया सोई होग
1: वाहे गुरु
0: तिसके मंत्र न जाने और सार तो सुनिए करता के तब में तपिसर गैस में भोगी नानक तस प्रभु का किने अंत न पाया सगल देव हरे गाए सगल परोई अपने सूत दस दास मान जाए से जन्म मरे पर आवे जाए जैसा जनावे तैसा नानक जाना नाना पे करे करंग प्रभव नासी एक ओंकार पूर्यो पूर्ण सब ठाए अपनी कीमत आपे पाई जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे पूर्णिया सब पवन
2: नाम के तारे
3: तारे सगल आकार
2: नाम के तारे सगल आकार
3: नाम के सावे कृष्ण सब
0: सर्ण नानक चौथे पद में सोजन गत पाए परक सत केवल प्रधान सत परक सब में समाणी मूल सत सत उत्पत जिसे बजाए तिसे सब भली बसवास सत नानक गुर ते पाई सत ते जान जाके हृदय प्रवेश नाम जपता की गत होए आपे जाने अपनी मित गत अपन रूज करत विचार नानक दोस पावै सो बतिया जिन बुद्धि आया गुर के

परम सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल चबर तखत छतर दे मालक गुरता गदी ते विराजमान जागदी जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार किरपा रहमत बख्शिश की है जो अज इस पावन दरबार दे विच दो परिवारों का सुमेल हो जा रहा है। इस खुशी के मौके पर दास खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर के समूह सेवादारा वालों आप दूरों नेड़े आए सारे पतवंते सज्जणा का तह दिलो धन्नवाद अते निघा जीवां कर रहा है। अज बड़ा ही खुशी का दिन है कि सतगुरां ने परिवारों के उपर बख्शिश की है। पर सत्संग जी एक गल का जरूर ध्यान रखा जाए कि सतगुरां का प्रकाश है, इस करके महाराज के सत्कार को मुख रखते हैं। दरबार दे विच गल्लां बातां करन तों परहेज रखना, अपनी सुरत अपना ध्यान असी शब्द दे विच जोड़न दा यतन करना। जिथे असी सतगुरां दे चरणां विच सुभाग जुड़े दे आउण वाले भविख दे लई अरदास बेनती करनी है, उत्थे ही अपनियां झोलियां भी गुरु साहिब पासों आपां खुशियां ते खेड़ां दे नाल भर के लिजाणियां ने। इस करके जिन्हां गुरमुखां नूं बाणी कंठ है जां बाणी पढ़ सकते हैं उन्हां दे चरणां विच बेनती है कि उह भी नाल नाल गुरबाणी दे गायन करन। बाकी संगतां वास्ते स्क्रीनां लगियां ने, वह भी नाल नाल फॉलो कर सकते हैं। आओ हुण दोनों ही परिवारों की जानकारी दास साहब जी ने सरमुख रख रहा है। काका जी गुरजीत सिंह, सपुत्र सरदार सुरेंद्र सिंह जी और माता जी करमजीत कौर, परिवार का पिछलेरा पिंड कंगणीवाल जिला जलंधर पंजाब, इस वक्त यह परिवार सरी बीसी का निवासी है। गुरजीत सिंह के दादा जी का नाम सरदार सरवण सिंह जी और दादी जी माता महेंद्र कौर, इन्हों के नाना जी सरदार दर्शन सिंह जी और नानी जी का नाम माता प्रकाश कौर है। इसी लड़का परिवार कमिंग टू द ब्राइड बीबा जी रविंदर कौर, सपुत्री सरदार जसवंत सिंह जी और माता जी जसबीर कौर, परिवार का पिछलेरा पिंड पारोवाल जिला गुरदासपुर पंजाब, इस वक्त यह परिवार लैंगली बीसी का निवासी है। रविंदर कौर के दादा जी का नाम सरदार पूरन सिंह जी और दादी जी माता हरबंस कौर, इन्होंने नाना जी सरदार करनैल सिंह जी और नानी जी का नाम माता जोगिंदर कौर है। सो ऐसी दोनों ही परिवारों की संखेप रूप में जानकारी। हुण सतसंग जी आरंभता की अरदास होगी जिस विच केवल सुभाग जोड़ी और इन्हों के जो माता पिता हैं अपने अपने स्थान उपर खड़े होकर के अरदास हाजिरी लवाएंगे। बाकी सतसंग जी आप दिन रचाना विच बेनती है आप प्रेम सहित सजे रहो। सो मैं बेनती करूँगा गुरजीत सिंह, रविंद्र कौर और इन्हों के जो माता पिता हैं अपने अपने स्थान उपर खड़े होकर के अरदास हाजिरी लवाएंगे जी। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाण, अरदास की सेवा निभा रहे ने ज्ञानी हरबंस सिंह जी, हैड ग्रंथी गुरद्वारा साहिब सुख सागर, उपरंत सतगुरों का मुख वाक ज्ञानी रणजीत सिंह जी आप समूह संगतों को सरवण कराउणगे। आओ प्रेम सहित हाजिरी लवाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।